होंगे और होगी मुगलाए, दर्द होंगे आंसू होंगे और होगी तन्हाई, हर एक साथ ये उलझन है, कहीं तंज है तो कहीं टेंशन है, हलवा हलवा छोड़ के बलवा मेरे भी।